सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो
1: बिंदास ओसम रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: ओसम

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

देखिए तकदीरों का शुक्र तो मनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आपसे सुबह सुबह मिलने का जो मौका मिला है ये छोरी कशिश आपकी जो कूल सी छोरी है कशिश जी आपके लिए बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई है जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार आज बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातचीत हम करने वाले हैं लेकिन थोड़ी सी देर में हम जो है मौसम के मामले पर बात करेंगे क्योंकि आज सुबह जब मैं अपने घर से यहाँ पर आ रही थी तब मैंने देखा कि यार बाहर तो ठंडक लग रही है, फिर मैंने जब अपनी एसी वाली गाड़ी से हाथ बाहर निकाला तो पता चला कि आराम से 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर एंड अभी तक मैंने जो है अपना वेदर ऐप देखा भी नहीं है। सो इस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों की जो है मॉर्निंग कैसी रही, आज का क्या प्लान है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ कह दीजिए मुझे 3311063 पर आकर। बाकी आपके लिए जो है इवेंट वाले बहुत सारे टिकट्स हैं, हम अलग अलग कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं। सो बस आपको उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाकर स्टे ट्यून रहना है। फिलहाल आपकी सुबह की शुरुआत जो है एक एनर्जेटिक नंबर से जो है वो करते हैं। सो लाल लाल कलरची बांगड़ी द बैंगल सॉन्ग आ रहा है संजू राठौड़ की आवाज़ में आपके रेडियो सेट्स पर। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आप कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: 106.3 रेडियो आलम पर मैं हूँ आपकी कशिश। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई है, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बी डैडी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। देखिए, टेम्परेचर में ऐसा बदलाव होगा ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार ठीक है, थोड़ा सा ये मौसम धोखा सा दे रहा है, लेकिन इतना भी क्या हो सा है? तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है अभी इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है, और यही टेम्परेचर जो है आज का लोएस्ट टेम्परेचर है। वापस हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 40 पर पहुंच चुका है, एंड मुझे यार 29 पे आ गए थे ना, तो खुशी हो रही थी कि चलो 20s में आ गए, वापस 30 पे पहुंच गए। कोई बात नहीं यार, देखो उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, और मौसम ही तो है जिसे उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। मतलब मौसम और मेरे मार्क्स जो है एग्जाम में यही थे जिनमें उतार चढ़ाव बहुत होता था। और वैसे तो मौसम देखो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, मेरे मार्कशीट पे तो बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं होती थी। पर कोई बात नहीं, जितना बच्चा पार्टी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपको जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि आप जो है हर इंसान से कॉन्फिडेंस से बात कर पाओ। बाकी कॉन्फिडेंस से मुझे याद आया कि थोड़ी सी देर में हम आज के कोट ऑफ द डे की भी बात करने वाले हैं। सो ज़रा आप स्टे ट्यून रहिए एंड जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपके पास कोई कोट है तो, वरना हाई हेलो गुड मॉर्निंग बस आपकी कशिश में जो है ऊर्जा भरने के लिए, एनर्जी भरने के लिए काफी होगा। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से अपना मैसेज जो है टाइप करके मुझे भेज दो। बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपकी रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो ये गाना आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

इस गाने के लिरिक्स जो है वो रिपीट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे शकीरावे इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आया, बट कोई बात नहीं, वाइब है गाने में तो इसलिए हमने इंजॉय कर लिया है। हाँ जी, आपकी कुल सी छोरी कशिश जो है वो आ चुकी है यहाँ पर आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को हम बिंदास बना रहे हैं। अब देखो यार, आपकी कशिश कूल है, लेकिन कई बार अनकूल से थॉट्स जो है वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। अब जैसे यार पिछले फ्राइडे ही हुआ, मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन मैं जो है अपना बेस्ट नहीं दिख पा रही थी। मेरे जो बाल थे वो एकदम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मेरी स्किन जो थी वो बेस्ट नहीं दिख रही थी, तो मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा था। एंड जिस इवेंट मुझे जाना था, जहां मुझे बाहर जाना था, वहां पे बहुत ही ज्यादा अदा खूबसूरत माशा अल्लाह लोग आने वाले थे। एंड मैं जो है जनरली किसी और से जो है ऐसे इंटिमिडेटेड फील नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शायद जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शायद मैं दिख परफेक्ट नहीं रहा हूँ। सो कई बार हमें ऐसा फील होता है। तो जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो यू नो सेल्फ डेप्रिकेट वाले जोन में रहते हैं कि यार खुद को खुद ही जो है आप रोस्ट कर लेते हो, खुद ही को खुद ही ज्ञान दे देते हो कि यार तुम परफेक्ट नहीं हो, उनके लिए आज जो है मैंने सोशल मीडिया पर एक बात पढ़ी थी कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। सो अगर आपको किसी से जो है ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो इनसे इन्फीरियर हूँ, सो ये आप खुद सोच रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं खुद को, वो नहीं बोल रहे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को प्रायोरिटी दें, खुद की तारीफ करें। कोई आओ और आपकी तारीफ करे या ना करे, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और खुद की तारीफ करनी है। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड दूसरा आपको जो है जो लोग आपको आपकी लाइफ में नेगेटिविटी घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों से आपको बहुत कम फर्क पड़ेगा। सो एक बार ही करके देखो, बाकी और बहुत सारी पॉजिटिविटी वाली बातें जो है अभी हमें करनी है। आके जो है आप सबके मैसेजेस पढ़ने वाली हूँ मैं, तो 3311063 पर आकर फटाक से एक प्यारा प्यारा मैसेज जो है वो मुझे लिख दो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: आड़ी संधु की आवाज में सोच गाना जो है आपने इंजॉय किया, और ये ओरिजिनल वाला है, बाद में एयरलिफ्ट मूवी में जो है यूज हुआ था। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। हाँ जी, आपकी ये जो कूल सी छोरी है ये आ गई है आपके दिन को और ज्यादा जो है बिंदास बनाने के लिए। अब आइए चलिए आप सबके जो है मैसेजेस जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मैसेज आया है जुल्फी जी का। गुड मॉर्निंग जुल्फी जी, आपने फिर से एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है। उसके बाद अबरार जी ने जो है एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजा है फ्लावर के साथ। एंड उसके बाद शशिकांत पाटिल जी ने भी एक बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है एंड उस पर एक बहुत ही अच्छा सा कोट लिखा है, द रिवर नेवर आर्ग्यूज इट विद द रॉक्स, इट फाइंड्स अनदर वे। ओ माई गॉड, सुबह सुबह के लिए बहुत हैवी मोटिवेशन है। एंड उसके बाद निजामुल्ला जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग, द बेस्ट डेज आर द वंस दैट स्टार्ट विथ नोइंग समवन आउट देयर इज रूटिंग फॉर यू, कंसिडर दिस योर डेली रिमाइंडर दैट आई एम एवरी मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड अभी इदरीस जी ने जो है वो हमें मैसेज किया है, एक बहुत ही प्यारी सी फोटो जो है वो भेजी है एंड उसके बाद लिखा है, हैव अ गुड डे इदरीस जी, थैंक यू सो मच। संजू जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट नॉक्स यू डाउन इन द लाइफ, गेट बैक अप, कीप गोइंग, नेवर गिव अप, ग्रेट ब्लेसिंग आर अ रिजल्ट ऑफ गुड परसीवेंस। बाप रे, इतना सारा सारे मोटिवेशनल वर्ड्स संधु जी आपने तो एक साथ ही लिख दिए। मेरे में इतना नहीं है कैपेसिटी कि मैं इतना सारा मोटिवेशन जो है वो एक साथ झेल सकूं। वैसे देखिए इसी मोटिवेशन की लहर के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑल द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर टॉक्सिक मूवी का ये ट्रैक इंजॉय कीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में आने के बाद मैं जो है आपसे पूछूंगी आज ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल, और ये देखेंगे कि आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah, guys.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

ऑफ कोर्स सब सही है ब्रो। देखो यार, अगर लाइफ में कुछ ठीक ना चल रहा हो ना, तो भी बस सब सही है ब्रो कह के आगे बढ़ जाओ, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक फील होने लग जाएगा। लेकिन एक चीज है जिसको मैं सही है ब्रो नहीं कह सकती, और वो है आपके गलत आंसर्स। सो ब्लैकबोर्ड स्टोरी का वक्त हो चला है, जहां पर मैं आपसे करने वाली हूँ एक सवाल, है ना, आपको देना है उसका सिंपल सा जवाब, मतलब सिंपल से सवाल का सिंपल से जवाब। और जितने भी बच्चा पार्टी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली ये सवाल आपके लिए है, बिकॉज ये जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो मुझे जो है आपको मैसेज करना है 3311063 पर, और ये बताना है कि एम जी ये जो है किसका केमिकल नाम है, किसी का शॉर्ट फॉर्म है, कौन से एलिमेंट का, एम जी बताइए मुझे 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बना रही हूँ मैं 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। अब जल्दी से फ़ोन उठाइए 3311063 पर, मुझे बताइए कि एम जी जो है किस केमिकल जो है एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, एम जी बताइए मुझे। कई लोग जो है गाड़ियों के नाम सोचने लग गए, नहीं नहीं नहीं नहीं एम जी बताइए मुझे 3311063। फिलहाल एक बहुत ही अम्यूजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कसूस के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
1: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

मूवी का नाम इतना बड़ा है कि उसमें सारे एफर्ट चलेगा, इसीलिए गाने को जो है रिक्रिएट करना पड़ा। विकी विद्या का वो वाला वीडियो देखिए, किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं है ये जो नाम है। वैसे मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आज ना मैंने ब्लैक बोर्ड स्टोरी में बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि एम जी जो है वो कौन से एलिमेंट का नाम है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं, एंड जितने लोगों ने आंसर दिए हैं उन सब के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जैसे सुदेव कहते थे ना कि यार आप पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं, और कशिश थे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे अवीज खान जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद अबरार जी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। इदरीस जी ने दो आंसर दिए हैं मुझे कि इनमें से कोई ना कोई तो ठीक होगा ही। उसके बाद

0: जो है मुझे अग्निवेश का एक ऑडियो नोट आया है एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है. सो इन्होंने क्या कहा है ऑडियो नोट में वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि उन्होंने फिर आंसर बताया और उसके बेनिफिट्स भी बताए. सो मुझे लगता है कि आप सबको एक और मौका देना चाहिए. सो 3311063 पर मुझे मैसेज करके ये बताओ कि एम जी जो है वो कौन से केमिकल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा नाम है. सो मुझे बताइए, आप लोगों के पास एक और मौका है 3311063 पर. बाकी जितने लोगों के मैंने नाम लिए उन सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो कंग्रेचुलेशंस, आप सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं एंड जबरदस्त हैं. इसीलिए एक जबरदस्त हिट गाना जो है आपके रेडियो सेट पर, जरा इसे एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर. मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. 3311063 इज द नंबर, जल्दी से इस नंबर पे जो है अपना आंसर मुझे भेज दो.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

कभी आपने सुनिधि चौहान को लाइव सुना है? यार मैंने सुना है, और मुझे पता है कि कितनी ज्यादा एपिक वाली एनर्जी जो है वो इनके कॉन्सर्ट में होती है। सो जो हम रेडियो पे इनके गाने सुन के इतना झूमते हैं, तो मैं लाइव सुन के कितना झूमी होंगी। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, थोड़ी सी देर पहले आपसे एक बहुत ही सौंदर्य सवाल मैंने पूछा था कि एम जी जो है वो किसका शॉर्ट जो है फॉर्म है, किस एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। एंड अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मुझे संतोष जी एंड योगिनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एंड आंसर है मैग्नीशियम। हाँ जी, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला जो है वो एम जी है। एंड अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है एंड ये एक एल्कलाइन टाइप होता है। एंड अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो जैसे हमें हमारे एक लिसनर अग्निवेश ने जो है ऑडियो नोट में बताया कि नींद के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो गेट योर सेल्फ चेक्ड, हो सकता है आपके बॉडी में मैग्नीशियम की काफ़ी कमी हो। सो एक बार अपनी बॉडी हेल्थ का, अपनी मैग्नीशियम का, अपने सभी मिनरल्स का जो है ध्यान रखें एंड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही खाना जो है वो स्टार्ट करें। बेसिकली वैसे ग्रीन वेजीज में जैसे अग्निवेश ने बताया कि मैग्नीशियम बहुत होता है, सो आप वो कंज्यूम कीजिए। लेकिन कई बार जो है किसी यू नो मिनरल का आपकी बॉडी में ज़्यादा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। वो कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। यानी किसी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है मेरे दोस्त। फिलहाल जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना, यानी अति अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये इंजॉय कीजिए। बाकी आपकी कशिश जो है वो आ रही है थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास।

गाने का नाम काफी है और गाने का नाम काफी नहीं है, मुसाफिर कैफे मूवीज कितना बुरा जोक मारा मैंने. ओके, मुसाफिर कैफे सीरीज से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आरएफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश. हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है आ गई है आपकी मॉर्निंग्स को बिंदास बनाने के लिए. अब देखिए यार, पहले ना मैं वो इंसान थी जो कभी भी लोगों को 24 घंटे जो है वीडियो कॉल पे देखती थी ना, तो यही बोलती थी कि यार इतनी क्या बात करनी होती है इन लोगों को, मतलब अपने घर से ही तो दूर है, इतना मम्मी पापा को पर हर मिनट की इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है, पूरे टाइम ये मम्मी से क्यों बात कर रहे हैं. सो मुझे ना काफ़ी ऐसा लगता था कि यार इतना तो मैं नहीं रह सकती अपने पेरेंट्स, मतलब मैं उनके साथ सेम घर में रहती थी ना, तो मुझे खाने को मिलता था उनके साथ, मुझे टाइम स्पेंड करने को मिलता था, तो मैं सोचती थी यार वीडियो कॉल क्यों करता है कोई अपने पेरेंट्स इतना ज्यादा. लेकिन फिर मेरा आना हुआ कतर है ना, अब मैं भी उसी इंसान में से हूँ जो 24 घंटे में से एटलीस्ट 22 घंटे यानी 22 आवर्स जो है वो अपने मॉम के साथ जो है कॉल पे रहती है हर छोटी चीज के लिए. मम्मी आज ये बनाया है, मम्मी ये कैसे बनेगा, मम्मी ये खरीद लूं, मम्मी ये अच्छा लग रहा है जनरली. ओके, सो एक बंदा है जिसने अपनी मम्मी को मिस करते हुए जो है ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, 24 घंटे वीडियो कॉल की फैसिलिटी जो है वो चालू कर देते हैं. तो इन्होंने अपने डाइनिंग टेबल पे एक ऐसा सेटअप बना दिया जिससे मम्मी को जो है फोन उठाना भी नहीं पड़ेगा, फोन लगाना भी नहीं पड़ेगा, 24 घंटे जो है उनका वीडियो कॉल चल सकता है. हाँ जी, हाउ थॉटफुल ब्रो. बार बार मम्मी कॉल कर रही है, आप उठा नहीं पा रहे हो, फिर आपको गिल्ट हो रहा है कि यार मम्मी इतनी दूर है, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं होगी, और मम्मी ने ये पूछने के लिए फोन किया है कि अगली बार जब आओगे तो नींबू का अचार खाओगे या आम का अचार खाओगे. सो ऐसी चीजों से बचने के लिए 24 घंटे का जो है वीडियो कॉल वाला जो है वो ऑन है, एंड मुझे अच्छा आइडिया लगता है ये. बाकी इस पे डिटेल में बात हम कर सकते हैं थोड़ी सी देर में, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए आपके थॉट्स इस पे 3311063 पर. फिलहाल मेरे ढोलना गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गार्मेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
4: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
3: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड।
1: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
0: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
5: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: जबरिया जोड़ी मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलवर। मैं हूँ आपकी कशिश,
1: ये छोरी कशिश,
0: और आपकी एक कूल सी छोरी कशिश जो है वो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आज से जो है बहुत साल पहले, मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ कितने साल पहले, लेकिन 2010 में जो है आज ही के दिन इंस्टाग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था, एंड हम सब के एडिक्शन का उसके बाद वो कारण बन गया है। मतलब इस दुनिया में अगर मेरे मम्मी पापा के लिए कोई भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है तो वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, वो है इंस्टाग्राम। तुम ये गलत बातें कहाँ से सीख रहे हो? इंस्टाग्राम से। तुम मुँह चलाना कहाँ से सीख रहे हो? इंस्टाग्राम से। तुम्हारा वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो। हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए जो है सबसे मेजर चीज इंस्टाग्राम है आजकल। मतलब अगर कुछ भी नया सीखना है, करना है, तो हम इंस्टाग्राम से देखते हैं। मतलब मेरी वोकैबुलरी बदल चुकी है। मतलब मैं आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ ये बोलती रहती हूँ, अरे मैंने पता इंस्टाग्राम पे देखा, अरे मैंने इंस्टाग्राम से ये निकाला है, अरे मुझे ना कल इंस्टाग्राम से पता चला, अच्छा मैंने ना इंस्टाग्राम पर देखा था, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। मतलब अगर इंस्टाग्राम जो है वो वर्ड बोलने में मुझे पैसे मिल रहे होते ना, तो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा अमीर इंसान होती। वैसे इंस्टाग्राम जो है जितनी हम बुराई कर रहे हैं उतना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम से सीरियसली इतनी सारे करियर ऑप्शंस जो है वो निकल गया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हो, साउंड इंजीनियर्स हो, चाहे वो ब्रांड्स को क्यों ना एडवर्टाइजिंग का फायदा मिल रहा हो। सो अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजिंग के लिहाज से, तो इंस्टाग्राम अभी सबसे बड़ा, सबसे मेजर एक प्लेटफॉर्म जो है वो उभरा है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है बिजनेस से कंज्यूमर को। कि तो क्या है, ये अब बीच के जितने लोग थे वो धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं, एंड कंटेंट से अच्छे तरीके से जो है, मतलब बोरिंग तरीके को टाटा बाय बाय बोल के जो है इंस्टाग्राम से लोग जो है अब जुड़ रहे हैं, एंड दैट्स अ नाइस थिंग आई फील, है ना। लेकिन कई बार इंस्टाग्राम जो है वो खर्चा भी बहुत करा देता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती हैं जो हमें एक्चुअल में लेनी नहीं होती हैं, लेकिन इतनी एस्थेटिक, इतनी प्यारी दिख रही होती हैं कि हम ले लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। तो जल्दी से जाओ रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पॉडकास्ट आपको मिलेंगे, फन कॉन्टेंट आपको मिलेगा, और डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जल्दी से जाके रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। और बाकी इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई आज यादों की बात कर रहे हैं। सो फनी इंस्टाग्राम

0: थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, तो इंस्टाग्राम के बारे में हम जब सोचते हैं तो फनी यूजर नेम्स के बारे में सोचते हैं, फनी बायो के बारे में सोचते हैं. सो चलिए एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव रखते हैं. आपको इंस्टाग्राम के बारे में सबसे फनीएस्ट चीज जो है वो क्या लगती है, इस पर हम बात कर सकते हैं. और आपका फर्स्ट इंस्टाग्राम का, अगर मैं स्टोरी को जानना चाहूँ कि यार इंस्टाग्राम हमने तो ऐसे चालू किया था या मेरे साथ तो ये हुआ. सो प्रोस्पेक्टिव आपके लिए ओपन है, आपको जो कहना है आप वो कह सकते हैं मुझसे 3311063 पर. थोड़ी सी देर में फनीएस्ट यूजर नेम्स जो है वो मैं लेकर आऊंगी आपके लिए. सो आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं वैसे उसमें. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आपकी रेडियो सेट्स पर. जरा वॉल्यूम बढ़ा कर ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: See what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant, and a mango plant.
2: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
3: Arey, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
1: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
3: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
4: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
5: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC apply।

0: ऑफ कोर्स जी, बिंदास वाला गाना बिंदास मॉर्निंग में आपकी इस बिंदास कशिश ने जो है आपको सुनाया।
1: ये छोरी कशिश,
0: गुड मॉर्निंग, आपकी कूल सी छोरी आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑल इज देयर। अब देखिए यार, इंस्टाग्राम पे ये वाला जो गाना है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। बीच में काफ़ी सारे लोग जो है इसमें ट्रांजिशन वीडियोस बना रहे थे एंड काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम का आज है हैप्पी वाला बर्थडे, तो हम इंस्टाग्राम के बारे में अच्छी बातें तो देखो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बातें भी कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है इंस्टाग्राम के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। एंड वो मेरे लिए एक चीज़ ये है इंस्टाग्राम को लेकर कि यार इंस्टाग्राम इंटेलिजेंट बहुत है, और ये ना बिल्कुल हमारी पड़ोस वाली आंटियों की तरह है। एंड ये ना पूरे टाइम हम पे नज़र रखता है और हमें बताता है कि यार अच्छा आज ये जो है बहुत खुश है, इसको जो है मैं अभी बताता हूँ कि यार इतना खुश होगी ना तो फिर रोएगी, ऐसे ऐसे करता है मेरे साथ। उसके बाद फिर अगर मैं सैड हूँ तो फिर मुझे जो है और ज़्यादा सैड करेगा। यानी इंस्टाग्राम पूरी तरीके से इस कोशिश में लग जाता है कि मेरा मूड अच्छा हो ही ना पाए। एंड किसी दिन अगर मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑलरेडी, तो फिर ये ना उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल के मुझे दे ही देता है। सो इंस्टाग्राम मुझे इसलिए जो है थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार इतना इंटेलिजेंट मत हो, जो मैं देखना चाहूँ मुझे सिर्फ वो दिखाया करो, मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी एक टाइम था जब हम जो है, अब तो खैर बहुत एस्थेटिक हो गए हैं, अगर मैं यूज़र नेम्स की बात करूँ या बायोस की बात करूँ, लोग बहुत सोच समझ के लिखते हैं एंड AI से भी हेल्प ले लेते हैं। लेकिन पहले जो है इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ था तब जो है लिखा जाता था कि बॉर्न ऑन दिस डे सेड हाय टू वर्ल्ड ऑन दिस डे, एक तो खराब इंग्लिश, ऊपर से हमें नहीं जानना है कि आपने वर्ल्ड को हाय कब कहा, आप केक मर्डर हैं, हमें नहीं सुनना है ये। सो ऐसे बहुत सारी फनी चीज़ें होती है। वैसे अगर मैं जो है बताऊँ, भी कुछ टाइम पहले तक जो है एक अंडे की जो फोटो थी वो सबसे ज़्यादा लाइक्ड फोटो थी इंस्टाग्राम पे। सोचो क्या बात है। वैसे इंस्टाग्राम जो है वो ये कहता है कि 38% ज़्यादा चांसेस जो है आपके लाइक्स के और व्यूज़ के बढ़ जाते हैं अगर आपकी फ़ोटो पे जो है किसी इंसान का चेहरा दिख रहा होता है। तो पता नहीं अंडे ने जो है इतनी लाइक्स कैसे पा लिए। कोई बात नहीं। सो इंस्टाग्राम को हैप्पी बर्थडे कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक अभी जो काफ़ी वायरल हो रहा है गाना उस पर चलते हैं। लोग काफ़ी प्यारे प्यारे ट्रांजिशंस बना रहे हैं अपने पार्टनर के इस गाने पे, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना उंगली मूवी से इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। थोड़ी सी देर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने क्या कहा है आपके लिए वो मैं बताऊंगी। सो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Lift 106.3 FM Gio Bendaz.
1: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ। सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC Plus।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान
1: भजन मान
0: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM
1: जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी यहाँ पर आ चुकी है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ ऐसे रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं। सो ताकि जितने भी लोग हैं, वैसे तो यहाँ का पे लोग जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से ड्राइविंग करते हैं, एंड क्योंकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं तो बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है, सडन लेन चेंज आपको नहीं करनी है। आपको अपनी जो आगे जो लाइट है उसे हाई बीम पे नहीं रखना है, एंड आपको ओवर स्पीडिंग जो है वो नहीं करनी है। ऐसी कुछ दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट से खुद को और अपने साथ वाले जो लोग हैं जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो जो गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें भी सेफ रख पाएंगे। सो इसी बात के साथ ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर एफ की रेडियो सेट पर ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए इसे आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल एफएम में। हूँ आपकी कशिश,
1: ये छोरी
0: जी, आपकी कौन सी छोरी कशिश आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग मॉर्निंग्स को जो है बिंदास बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बीड़ा जो है मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, फेस्टिव सीजन आते ही अचानक से यू नो बॉडी में सेंसेशन होने लग जाती है डांस की, म्यूजिक की, फन की, एंड अलमारी में रखे हुए एथनिक कपड़े बोलने लगते हैं कि अब हमें भी निकाल लो, हमारी बारी आने वाली है। लेकिन लेकिन लेकिन ऐसे किसी भी नॉर्मल इवेंट पे जाकर उसे जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ए हालो धूम, जहां पर इस फेस्टिव सीजन में आपको घूम घूम के डांस करने का, म्यूजिक एंजॉय करने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड सेंसेशन इशिता विश्वकर्मा भी जो है वो हमें ज्वाइन करने वाली है, एंड चटपटे गाने विद चटपटे स्ट्रीट फूड आपको सब मिलने वाला है। सो कहो ए हालो रेडियो ऑल ओवर ए टू जी इवेंट्स के साथ। अब देखिए यार, इस फ्राइडे यानी 9th of October को ये इवेंट होने वाला है रेजेंसी हॉल में, शाम को 6:30 से हम शुरुआत जो है वो कर देंगे। बाकी अगर आपको इस इवेंट की टिकट जो है वो खरीदनी है तो स्नूनू से जो है आप टिकट्स खरीद सकते हैं। बाकी आज जो है आपको टिकट्स, कपल टिकट जीतने का जो है मौका मैं दे रही हूँ। सो बस आपको जो है, जो मैं म्यूजिक अब आपको सुनाऊंगी, ये म्यूजिक जो है वो सुनना है, गाना पहचानना है, और बस मुझे इस गाने की जो है मूवी का नाम बताना है। तो मुझे जल्दी से जो है बस इस गाने का नाम जो है वो आप बताइए 3311063 पर। जरा कान और ध्यान लगाकर सुनिए कि आखिर ये गाना जो है वो कौन सा है।

जल्दी बताइए, पहचान तो गए होंगे आप कि ये गाना कौन सा है। 3311063 पर मुझे बस ये बताइए कि ये गाने जो है, इस गाने का नाम क्या है, और अगर एक्ट्रेस बता देंगे तो एड ऑन हो जाएगा। बाकी विनर्स कौन है वो भी आपको पता चलेगा धीरे से। कल वाले विनर्स जो है वो भी अभी तक हमें नहीं पता चले हैं, सो वो भी आपको पता चलेंगे। लेकिन 3311063 पर फिलहाल जल्दी से कपल टिकट के लिए जो है हमारे इवेंट की, ए हालो धूम की टिकट के लिए जो है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये जो गाना है इसका नाम क्या है एंड इसमें एक्ट्रेस जो है वो कौन सी परफॉर्म कर रही है। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
1: नमस्कार मैं हूँ गुलराज सिंह
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
2: जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

उदित नारायण जी की आवाज में ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आरएफ पर। ये छोरी कशिश, हाँ जी मैं हूँ आपकी कूल सी छोरी कशिश एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा रखी है अपने नाजुक कंधों पर। आप देखिए यार, हम बात कर रहे थे ए हालो ढोल इवेंट के बारे में जो इस फ्राइडे को होने वाला है, जहाँ पर हम बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती और मजा करने वाले हैं एंड बॉलीवुड सेंसेशन इशिता विश्वकर्मा जो है वो भी हमारे साथ होने वाली है परफॉर्म करने के लिए लाइव, ताकि आपको चटपटी म्यूजिक और चटपटी स्ट्रीट फूड की बिल्कुल भी कमी ना हो। अब देखो यार, अगर आपको ये इवेंट यू तो अगर ज्वाइन करना है सो आप स्नूनू से जाकर जो है अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मौका दे रही हूं आपको एक कपल टिकट जीतने का। सो बस आपको जो है एक गाना पहचानना है और मुझे उस गाने का नाम बताना है और उस गाने में जो है परफॉर्म कर रही एक्ट्रेस का नाम बताना है। वैसे तो बहुत

सारे आंसर ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं जिनमें से कुछ सही भी हैं, लेकिन मुझे जो है समझ आया कि यार इन सब की बीट जो है वो बहुत सारे गानों की सिमिलर है, इसीलिए मैं एक हिंट ड्रॉप कर रही हूँ ताकि उन लोगों को भी समझ आ जाए जिनको थोड़ा सा यू नो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सो पहले मैं हिंट दे देती हूँ कि इस मूवी में जो है रणबीर सिंह जो है वो हमें देखने को मिले हैं एंड एक्ट्रेस जो है वो उनकी बहुत ही क्लोज है। सो 3311063 पर आप आंसर दे सकते हैं। जरा कान और ध्यान लगाकर एक और बार ये गाना जो है उसका चंक सुनिए और मुझे आंसर दीजिए।

0: बताइए जी 3311063 पर कि आखिर ये गाना जो है इसका नाम क्या है और इस गाने में कौन सी एक्ट्रेस जो है वो परफॉर्म कर रही है। तब तक जो है इस जबरदस्त हिट गाना जो है वो आप इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर, और बाकी थोड़ी सी देर में जितने विनर्स हैं उनके नाम जो है वो मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड जी बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: पे मैच हुआ प्रोफाइल, बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थिंग टू कैट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: कौन चुकी राज?
1: हाँ प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
2: गाके गाके गाके गाके

0: किसी से था मुझे दूजा ही कोई मिल गया, नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ,
0: लिपट गई आके नशे में।

0: प्रेजेंट हराज।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

हल्ला तो देखो होगा ही जब ओ हेलो धूम में हम सब धूम मचाएंगे एंड बहुत सारा फन करेंगे। अंजी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग्स को जो है मैं बिंदास बना रही हूँ। एंड मैंने ना थोड़ी देर पहले आपको एक गाना सुनाया था, मतलब गाने का एक पार्ट सुनाया था, और आपको गेस करना था कि यार ये जो है कौन सा गाना है एंड इस गाने में परफॉर्म किसने किया है। सो जरा एक बार वो आपको मैं वापस सुना देती हूँ कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ।

हाँ जी, ये वही गाना है जिसे सुनने के बाद सबको एकदम फेस्टिव वाइब आ जाती है। फेस्टिव वाइब देख रहे हैं, फेस्टिव वाइब बोला है मैंने। इस गाने में परफॉर्म कर रही है रणवीर सिंह के साथ उनकी वाइफ यानी दीपिका पादुकोण, एंड 30 किलो का लहंगा पहन के, यानी 30 kg का लहंगा जो है, सिर्फ लहंगा, सिर्फ घाघरा जो है वो पहन के, उसके ऊपर से ज्वेलरी, उसके ऊपर से इतने हार्ड स्टेप्स जो है वो किए थे दीपिका ने, एंड इट इज़ अमेजिंग। और ये गाना है नगार संग ढोल बाजे, एंड इसकी कोरियोग्राफी भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से की गई थी। सो अपने घाघराज, अपनी चोलीज, अपने लहंगे जो है वो तैयार कर लीजिए ए हालो धूम इवेंट के लिए जो हम इस फ्राइडे को करने वाले हैं। एंड इसकी जो है कपल टिकट्स मैं दे रही हूँ, और इसका जवाब जो है, जो ये सवाल मैंने किया था, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान जी ने, एंड श्वेता जी ने, सुनील जी ने, रहमान जी ने, सैयद नोमान जी ने, सतीश जी ने, बहुत बिल्कुल सही सही आंसर जो है वो दिए हैं। लेकिन हमारे जो है विनर्स अगर मैं कहूँ तो वो हैं पार्थ जी एंड सतीश जी। कंग्रेचुलेशंस, एक ऑफिशियल मैसेज जो है वो हमारे नंबर से आपको आ जाएगा कंफर्मेशन का, एंड फिर हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा कि आप अपने पासेस जो है वो कब कब कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे शेयर करना ना भूलें। बाकी आप सब जिन्हें अभी जो है मतलब अनफॉर्चुनेटली जो है टिकट नहीं मिल पाई है, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सिमरन के शो में यानी इवनिंग शो में, जबरदस्त इवनिंग में भी आपको मौका मिलने वाला है कि आप जो है ये टिकट जीत सके। एंड अगर आपको अभी के अभी जो है जीतने के लिए कुछ करना है, सो इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पर हमने एक रील पोस्ट की है, वहां पर जाके आप उस रील को शेयर करके, कॉमेंट करके जो है टिकट जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। ठीक है, सो 3311063 पर मैसेज कीजिए, जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, एंड वहां जाकर भी आप टिकट जीत सकते हैं। बाकी अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, आई हेट लव स्टोरीज से बहारा बहारा। इंजॉय करके आइए, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, और कहते रहिए जियो पिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
0: पहला जादू।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: देखिए जी, अब आपकी इस सजनी की आपको याद सताएगी कल सुबह 6 बजे तक, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड अब हमारी मुलाकात होगी कल सुबह सुबह 6 बजे बिंदास मॉर्निंग में।
1: ये छोरी कशिश,
0: हाँ जी, आपकी एक और सी छोरी, आपकी कशिश जो है आपको आज एंटरटेन कर रही थी सुबह से लेके अभी तक बिंदास मॉर्निंग में, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको चाचा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सो आप जो है स्टे ट्यून रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, अमेजिंग गाने आपके लिए आ रहे हैं, कॉन्टेस्ट आ रहे हैं जिससे आप जो है बहुत अमेजिंग टिकट्स जीत सकते हो। बाकी जाते जाते मैं वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाओ, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो एंड मुझे जो है याद करते रहो। बाकी रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लो ताकि आपसे कोई भी छोटी बड़ी अपडेट जो है वो मिस ना हो। फिलहाल जाते जाते आपको मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक बंजारी डुओ के बरसात गाने के साथ जो है वो छोड़े जा रही हूँ। स्पाइडर मैन के अगर आप फैन है तो उसके प्रमोशन में भी ये गाना काफी यूज हुआ था, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना यूज करो, मतलब रील्स में यूज करो, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। Bye bye, take care.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और आज एक यू नो थॉट से शुरू करते हैं. हम लाइफ में ना एक स्ट्रेंज प्रेशर लेके चल रहे होते हैं. मुझे सब पता होना चाहिए वाला प्रेशर, करियर किधर जाना है, पैसे कब सेव होंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, फर्स्ट ईयर के बाद क्या करना है. अरे भाई, लाइफ कोई गूगल मैप थोड़ी है कि डेस्टिनेशन डालो और टर्न पे ब्लू लाइन मिल जाएगी. कभी कभी ना आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए. पूरा स्टेयरकेस नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली सीढ़ी तो दिख रही है ना, बस उस पर चढ़ जाओ. और ऑनेस्टली लाइफ में क्लैरिटी भी अक्सर मोमेंट के बाद ही आती है. पहले चलिए, फिर पता चलता है कि जाना किधर है. और लाइफ मस्त रिमाइंडर भी यही है कि आपको पूरी लाइफ आज फिगर आउट नहीं करनी, बस आज का दिन थोड़ा सा बेटर बनाना है. सो यू टेल मी कि आज आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने वाले हो, या जो कल नो थोड़ा सा जो चीज़ें ठीक नहीं थी उन पर फोकस करने वाले हो. बिग रिजोल्यूशन नहीं, बस वन स्मॉल विन चाहिए आपको. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो आज बर्थडे है वन ऑफ दोस एक्टर्स का जिनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात कह सकते हैं कि उनको हीरो बनने के लिए जरूरत नहीं है. ही डजंट नीड टू बी द हीरो टू ओन सीन. ठीक है, संजय मिश्रा आज वो 63 ईयर्स के हो गए एंड हिज करियर इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ वॉट हैपन्स वेन एन एक्टर चूजेस कैरेक्टर्स ओवर कन्वेंशनल स्टारडम. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप उनकी वर्थ देख लीजिए या और भी कोई मूवी में परफॉर्मेंस देख लीजिए. ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम हीरो को याद रखते हैं लेकिन कभी कभी फिल्म का वो एक कैरेक्टर याद रह जाता है जो टेक्निकली साइड में था. संजय मिश्रा का एप्पल सिंह वाला कैरेक्टर याद है आपको, मसान याद होगा या फिर आंखों देखी आपको याद होगी. ये वो एक्टर्स हैं जो स्क्रीन पर आते हैं और सडनली आप बोलते हो कि ओके अब सीन इंटरेस्टिंग है. एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल लेसन इवन आउटसाइड सिनेमा. हर जगह ना सेंटर स्टेज पर होना जरूरी नहीं होता, कभी सपोर्टिंग रोल भी बहुत ज़्यादा यादगार रह जाते हैं. सो आज का क्वेश्चन है कि बॉलीवुड का वो कौन सा सपोर्टिंग एक्टर है जो आपको लीड एक्टर से ज़्यादा याद रह जाता है, जैसे मुन्ना भाई MBBS का वो अर्शद वारसी वाला कैरेक्टर. यू टेल मी. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

ओके, दिस इज फॉर मार्वल फैंस. स्पाइडरमैन घर आ रहा है. यस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो थिएटर रन है उसके बाद डिजिटल विंडो पर आ चुका है. सो अब एक पुरानी डिबेट फिर से अलाइव है, बिग स्क्रीन या बिग सोफा. थिएटर में बड़ी सी स्क्रीन सराउंडेड बाय साउंड और ऑडियंस का रिएक्शन, और घर पर आप अपने बेस्ट सोफे पर अपने पॉज बटन के साथ, अपने ब्रेक्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मिनट चाय बनाकर आती हूँ वाला ब्रेक. सो सुपर हीरो मूवीज का ना रियल मैजिक क्या है? कुछ फिल्म्स जेन्युइनली बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए बनी होती हैं. सो आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, एवटार जैसे जो मूवीज हैं वो थिएटर में देखना चाहिए या फिर गुड टीवी प्लस गुड साउंड सिस्टम कैन कम्पीट दैट? और बाय द वे ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन अब OTT पर आ रही है. आप मूवी थिएटर के लिए जाते हैं या पॉपकॉर्न के लिए, ये भी जरूर बताइएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है.

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे
1: एक टाइम में कहा जाता था द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

तेनू तकिया ते साया तेरे नालों वद सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदला नूए मौसम कोई नवाया मैं पहली

0: सो आज ना किताबों की दुनिया में एक अनयूजुअल मोमेंट था. बेस्ट सेलिंग ऑथर है जेफरी आर्चर का फाइनल नॉवल, उनका ऑफिशियली आज लॉन्च था, वो पब्लिश हो रही है. एंड उन्होंने खुद कहा कि फाइनल नॉवल आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. और उन्होंने एक फैसिनेटिंग डिटेल शेयर की, 1.5 लाख वर्ड्स और मोर देन 20 ड्राफ्ट्स. मतलब हम रीडर बुक खोलते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और बोलते हैं कि वाह यार क्या स्टोरी है, पर राइटर की साइड पता है क्या है, 20+ वर्जन्स हैं. एंड दैट्स व्हाट आई लव क्रिएटिविटी. द फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एफर्टलेस दिखता है, पर उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. देयर इज़ यूजुअली अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. और इस किताब में जो आज रिलीज हुई है बहुत ही ब्यूटिफुल थाट है. इज दिस रियली इज योर फाइनल बुक, सो वॉट डू यू वॉन्ट टू लीव बिहाइंड. मतलब नॉट जस्ट एज अ राइटर, एज अ पर्सन अगर मैं पूछूं, सो अगर आपको पता हो कि दुनिया आपको आपकी एक ही क्रिएशन के लिए याद रखेगी, तो आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? कोई किताब, कोई गाना, कोई बिजनेस, कोई घर, या सिंपल एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी? टेल मी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. ये है रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. ये

0: सा मन भागे तेरे पीछे, बावरा सा मन, बावरा सा मन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो दिस इज फॉर यू लेडीज, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है, क्योंकि भाई वापस आ गया है द ज़िगज़ैग हेयर बैंड। सो वो प्लास्टिक वाला जो लेट 90s और अर्ली 2000s में ऑलमोस्ट हर स्कूल और कॉलेज गर्ल के पास होता था, एंड नाउ पेरिस फैशन वीक में गिगी हैडिड वॉज स्पॉटेड वियरिंग द नॉस्टैल्जिक ज़िगज़ैग हेयर बैंड आफ्टर म्यू म्यू स्प्रिंग 2027 शो, एंड सडनली दिस टाइनी एसेसरी इज हैविंग अ वेरी सीरियस फैशन कमबैक। जो हेली बेबर और बेला हैडिड हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ द रिवाइवल। सो फैशन का ना एक रूल समझ लीजिए, नेवर थ्रो एनीथिंग अवे, ठीक है? मतलब मैं तो ये बहुत करती हूँ कि नहीं अब तो ये फैशन में नहीं है या ये पुराना दिखने लग गया, इसको हटा देते, क्योंकि 15 साल बाद वोग उसे ट्रेंड बनाकर वापस लेकर आएगा, आई एम श्योर। सो 2000s का वो हेयर बैंड, बटरफ्लाई क्लिप्स, टाइनी सनग्लासेस, लो राइज जीन्स सब वापस आ रहा है। सो यू टेल मी कि कौन सा 2000s का ट्रेंड है जो आप हैप्पीली वापस चाहते हो, और कौन सा ट्रेंड देखकर आप बोलोगे कि प्लीज लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukwakif Alkhol.
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप।
3: दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव

0: सो आपने कोई मूवी देखी, हीरो अच्छा था, हीरोइन बहुत ब्यूटीफुल थी, स्टोरी भी ठीक थी, लेकिन घर आकर आप किसकी बात कर रहे हैं यार, वो साइड वाला कैरेक्टर जो बहुत ही जबरदस्त था, एंड दिस हैपन ऑल द टाइम, यू नो, पंकज त्रिपाठी हो गए, संजय मिश्रा, विजय राज, या फिर रतन पाठक शाह, या राजपाल यादव, समटाइम्स अ सपोर्टिंग एक्टर एंटर्स फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, और सम हाउ वॉक्स अवे विद द इंटायर मूवी, क्योंकि मेमोरेबल कैरेक्टर के लिए स्क्रीन टाइम जरूरी नहीं है, इम्पैक्ट जरूरी है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, और शो का नाम लाइफ मस्त है. और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है भाई, हर टीम में एक स्टार नहीं होता, कभी कभी वो पर्सन जो धीरे से काम कर रहा होता है एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सो टुडे लेट्स प्ले, यू नो, हु स्टोल द मूवी. आपका फेवरेट सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन सा है? यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लॉट ऑफ पीपल, जो मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल सेकेंड्स में याद आ जाएंगे. सो मूवी का नाम भेजिए, कैरेक्टर का नाम भेजिए, और हम देखते हैं कि किसने हीरो को कॉम्पिटिशन दे दिया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान। अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में।

0: सो फैशन ट्रेंड्स की प्रॉब्लम पता है क्या है, आप एक ट्रेंड समझते हो तब तक दूसरा आ चुका होता है। आज थोड़ी सी लग्जरी, कल जो है कुछ और होगा, परसों रोमांटिक ड्रेसिंग, फिर सडनली 90s बैक और वार्डरोब खोलकर हम कहेंगे कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। मे बी दैट्स वाई पर्सनल स्टाइल इज मोर इंटरेस्टिंग देन ट्रेंड्स, यू नो। सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ ऐसे कपड़े लेती हूँ जो एवरग्रीन हो, मतलब लूज, ओवरसाइज्ड, जो मुझे लगे कि यार कभी कुछ तैयार होने का मन नहीं है तो मैं ये पहन सकती हूँ, या कभी ऐसा लगे कि कुछ ऐसी ड्रेसेस जो बहुत ही क्लासी हैं हम कहीं पर भी पहन सकते हैं। सो उससे क्या लगेगा आपको कि आपको बार बार कपड़े खरीदने का मन नहीं करेगा। सो वट एवरी वन इज वियरिंग उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पर्सनल स्टाइल खुद होगा। सो वट फील्स लाइक यू, मे बी योर थिंग्स यू नो आर लाइक सारीज, मे बी वाइट शर्ट, स्नीकर्स, गोल्ड ज्वेलरी, मे बी ब्लैक, जो भी हो, पर आपको बार बार ऐसा नहीं लगेगा कि यू डोंट हैव एनीथिंग। मे बी यू डोंट केयर अबाउट फैशन एट ऑल एंड योर सिग्नेचर स्टाइल इज कम्फर्ट फर्स्ट, बाकी दुनिया बाद में। सो यू टेल मी कि आपके वार्डरोब का वो वन पीस क्या है जो ट्रेंड हो या ना हो, यू नो यू विल वेयर इट 5 years फ्रॉम नाउ टू। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नानाताल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर
2: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ
3: फुटवेयर गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स
2: क्लॉक इज टिकिंग ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक डोंट जस्ट शॉप स्कोर बिग आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर
0: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
4: Hi, Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

0: ठीक है, किसी को कुछ याद नहीं है बट आपके दिमाग को सब याद है। गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। मतलब मॉर्निंग तो एक्चुअली खत्म हो गई है बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आपसे बातें करती हूँ ना तब तक एनर्जी एकदम मॉर्निंग वाली रहती है। शैल वी रीप्ले दैट मेमोरी अगेन? अच्छा, यू सेड द रॉन्ग थिंग इन अ मीटिंग और आपने कुछ गलत बोल दिया, कोई गलत नाम ले लिया, ठीक है, वेव बैक एट समवन हु डजंट वेविंग एट यू, किसी को मैसेज भेज दिया गलत, ठीक है, और ब्रेन जो है उसको याद है सब कुछ, ये 8-10 साल पुरानी बात है। व्हाई डज आवर माइंड मतलब होल्ड ऑन टू दीज टाइनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सो स्ट्रांगली? सो साइकोलॉजिस्ट ना इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमको लगता है कि हमें ना सब याद रखते हैं बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम खुद ही खुद को इतना हाईलाइट कर रहे होते हैं। इन रियलिटी मोस्ट पीपल आर फार टू बिजी थिंकिंग अबाउट देयर ओन ऑकवर्ड मोमेंट्स, सो मे बी दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट नोबडी एल्स रिमेंबर्स, एंड ऑनेस्टली दैट्स क्वाइट फीलिंग, यू नो। हम जिस मोमेंट को अपनी लाइफ का बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट समझ रहे होते हैं, हो सकता है कि सामने वाला उस दिन के लंच में क्या खाया था उसने वो भी भूल चुका हो। सो आपका वो कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट है जो आपका ब्रेन है बिना परमिशन के कभी भी रीप्ले कर देता है? सो यहाँ पर मैं सारे फनी कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

सो एक ब्यूटिफुल लिटिल रिमाइंडर है आपके लिए, लुक अप। नासा के स्काई वॉचिंग गाइड के अकॉर्डिंग आज यानी कि 6th of October में द मून एक्चुअली जुपिटर को टेम्परेरली अकल्ट करेगा, मतलब जुपिटर मून के पीछे जो है वो डिसअपियर होता हुआ नजर आ सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि आप कहाँ से देख रहे हो, एंड आई विल से कि बट इसको मिस नहीं करना, थोड़ा सा ट्राई करना देखने का आसमान की तरफ। ऑनेस्टली मुझे एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ लगती है, विच इज़ हम स्काई देखते कितनी बार हैं यार। हम सनसेट देखते हैं, फ़ोन निकालते हैं, मून देखा, फ़ोटो खींचा, ब्यूटिफुल क्लाउड्स देखे, स्टोरी बनाई, स्टार्स देखे, कैमरा निकाला, कभी कभी बस फ़ोन पॉकेट में रखो और देखो कि यहाँ पे कोई आपको पिक्चर क्लिक नहीं करनी है, कोई रील नहीं बनानी है, कोई एस्थेटिक कैप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ देखना है आसमान की तरफ, क्योंकि हम इतना स्क्रीन देखते हैं कि एक्चुअल स्काई देखना ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। सो आज का क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम कब आपने बिना फ़ोन निकाले बस 5 मिनट तक आसमान की तरफ देखा था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मुस्कान है आपके साथ और ये है लाइफ मस्त है।

Olive Bay. Story of the day. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

अच्छा, अब लाइफ मस्ते को एक ब्यूटीफुल से कॉन्वर्सेशन के साथ रैप अप करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। ग्रोइंग अप के साथ ना एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो चीजें पहले बोरिंग लगती थी वो सडनली अच्छी लगने लग जाती हैं। पहले मम्मी सुबह जल्दी क्यों उठना है बोलते थे हम, अब सुबह यू नो हमें चाहिए कि थोड़ा टाइम हो हमारे पास, हम जल्दी उठ जाएं। पहले घर पे रहना बोर हो जाएंगे वाले फील आता था, अब लगता है कि यार प्लीज प्लान को कैंसिल कर दो, बस घर पे रहना है। सो पहले फैमिली के साथ डिनर हम कहते थे क्यों करना है, पर अब सब एक साथ मिल जाएं बस यही सोचते रहते हैं। पहले एक्साइटमेंट चाहिए था लाइफ में और अब कभी कभी बस पीस चाहिए। एंड मे बी दैट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग अबाउट ग्रोइंग अप। योर डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ जो है वो चेंज होने लग जाती है। सो टुडेज़ फाइनल यू नो लाइफ मस्त है क्वेश्चन इज कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले आपको बहुत बोरिंग लगती थी बट आज आप जेन्युइनली उसे इंजॉय करते हैं। मे बी चाय और एक शांति भरा सुकून, मे बी अर्ली मॉर्निंग्स, मे बी रीडिंग, मे बी स्टेइंग होम, मे बी सिंपल फैमिली डिनर, मे बी जस्ट हैविंग एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। क्योंकि समटाइम्स ग्रोइंग अप इजंट अबाउट बिकमिंग मोर सीरियस, इट्स अबाउट लर्निंग व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Deepika Padukone,
1: Radio Olive 106.3.
3: I'm a number one, Radio Olive.
4: Olive Sunil Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Olive Music Marathon. Ek ghanta, non-stop back to back gaane.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। ओलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सदैव। तो चलिए कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, बांध रखिए तो और कसके बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और यही बोलते हुए याद दिलाते हैं कि 3311063 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज और बताइए क्या हाल है। चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो।
2: Money follows, my brother.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा रनर्स हाई के बारे में। तो क्या है बेसिकली एक रनर्स हाई और उसके पीछे का साइंस क्या है करके। सो रनर्स हाई जो है एक शॉर्ट एक रेयर स्टेट ऑफ यूफोरिया और कामनेस है जो लॉन्ग हार्ड एक्सरसाइज के बाद जो है एक इंसान फील करता है या फिर उसके दौरान फील करता है। ठीक है, काफी जॉयफुल आप फील करते हो, आपके बॉडी को काफी रिलीज महसूस होता है, आप बिल्कुल भी पेन फील नहीं करते हैं और आपका जो वर्कआउट है वो काफी सिंपल और एफर्टलेस लगने लग जाता है। इसका साइंस क्या है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स है बॉडी में जो कैनबी की तरह एक्ट करते हैं, उनका नाम है एंडोकैनबिनॉइड्स। और एंडोर्फिन्स भी जब बॉडी में रिलीज होते हैं तब भी हम ये जो एक्सपीरियंस है उसको कर पाते हैं। और कुछ लोग जो है काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ देते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ एंडोर्फिन्स के कारण ही हम ऐसा फील करते हैं, मगर साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि भाई उसके साथ साथ एंडोकैनबिनॉइड्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व है करके। तो कैसे आप एक रनर्स हाई फील कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने 70-80% मैक्स हार्ट रेट के हिसाब से आप दौड़िए और डिस्टेंस तक दौड़िए, यानी कि 30-60 मिनट्स तक आपको जो है एक्टिव रहना है। और कुछ लोगों के लिए 4-5 माइल्स जो है लगते हैं ये फीलिंग आने के लिए। और कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग दौड़िए। मगर एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा रनिंग से रिलेटेड जो लुसेल बोलेवार्ड में आने वाला है, क्या है जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio Olive Bird. Aane wala gana, cool song of the hour.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Only laga aur ho ja richar. Olive Recharge.
0: Olive Recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा लुसेल 5 के डैश के बारे में, जो अक्टूबर 10 को लुसेल बोलेवार्ड में आने वाला है। तो इस शाम की शुरुआत जो है रेस विलेज में 4:30 बजे होगी, जैसे ही ओपनिंग होगी उस चीज की, जहां पे 1 किलोमीटर किड्स रेस होगा 6 बजे, उसके बाद एक 5 किलोमीटर डैश होगा 7 बजे, और ये पूरा इवेंट जो है 8:30 तक खत्म हो जाएगा, जिसमें अवार्ड सेरेमनी भी और विनर्स को जो गिव अवेज देने हैं वो भी कंप्लीट किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप एक रनर हैं, रनिंग करना पसंद करते हैं, या फिर अपने आप के लिए एक नया चैलेंज रखना चाहते हैं रनिंग करते हुए, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। एक टाइम में कहा जाता था द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना।

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पहली बात तो ये बताना है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कतर में ड्राइव करते हैं। जस्ट एक रिमाइंडर देना जो है मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो देखिए, अनसेफ लेन चेंजेस ना करें और बहुत ध्यान रखें लेन चेंजेस करते वक्त, और उसके साथ साथ जब लेन चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर देना ना भूलें, और फोकस और अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोन यूज करते हुए कृपया गाड़ी ना चलाएं, ध्यान नहीं हटना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और टिप, वो ये है कि किसी गाड़ी के एकदम क्लोज जाने से अपने आप को रिफ्रेन कीजिए, जो एक मेजर रिस्क हो सकता है। और उसके साथ साथ एक दूसरे रोड में एंटर करते वक्त मेक श्योर कीजिए कि रोड जो है क्लियर है और बहुत ही इजीली जो है आप वहां पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सेफर रोड्स स्टार्ट विद फॉलोइंग द रूल्स, और यही याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। 1950s में अमेरिका में जो है जनरल मिल्स करके एक कंपनी थी जो बहुत ही बढ़िया एक केक रेसिपी जो है देती थी, इजी टू बेक केक रेसिपी जो है लोगों को प्रोवाइड करती थी। कुछ नहीं करना था उसमें, बस उस मिक्स में आपको पानी डालना है, बेक करना है, खत्म। मगर उस टाइम में जो हाउसवाइफ्स थे वो बहुत ऐसे दुखी से हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हम जो है एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अपने फैमिली को केक खिलाने में, और इसी कारण से उस प्रोडक्ट के सेल्स में जो है बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया। तो कंपनी ने क्या किया, उस एक मिक्स में से पाउडर्ड एग्स को हटा दिया और इंस्ट्रक्शंस में डाला कि आपको एग्स क्रैक करके इसमें मिक्स करना है, देन बाकी प्रोसेस कंप्लीट करना है करके, और उसके बाद जो है कंपनी के सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो बेसिकली साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन। हमें एक चीज़ में या फिर एक चीज़ करने में जब जितना हम एफर्ट डालते हैं उसके एंड प्रोडक्ट को उतना ही ज़्यादा हम एन्जॉय कर पाते हैं। अगर कुछ करने में हमने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है और हमें एंड प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल जाता है तो हम उतने हैप्पी नहीं होते, और यही चीज़ जो है बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, लोगों से एफर्ट डलवाते हैं ताकि एंड प्रोडक्ट जो है उन्हें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई तैयार हो जाइए ब्रूक सीजन के लिए। जी हां, 23 दिसंबर 2026 से लेकर 4 फरवरी 2027 तक जो है रासा ब्रूक में ब्रूक सीजन शुरू होने वाला है, जहां पे विंटर को आप काफी मेमोरेबल बना सकते हैं एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के साथ, एंटरटेनमेंट और बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स ऑफ डिस्कवरी जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके टाइम के बारे में जो है ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि हम अनाउंस करेंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और भी डिटेल्स जानने के लिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

ऑलवेज एक और बार स्वागत है, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। एक काफी बढ़िया ऑफिस में मेमोरेबल चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बढ़िया उपाय हमारे पास है, वो यही है कि आप रेडियो ऑलिव के टीम को अपने ऑफिस में इनवाइट कर सकते हो एक दिन फन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एक वर्क डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है हमें मैसेज करना है 3311063 पर HL स्पेस आपके कंपनी का नाम, क्योंकि ये है हैप्पीनेस लॉन्ज जहां पे हम आपके ऑफिस में आएंगे, आपके साथ चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करेंगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और दोहा जो है सही में एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है कल्चरल इवेंट्स के लिए, साथ ही साथ स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। और एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्टिंग इवेंट जो है दोहा में आने वाला है, विच इज पावर स्लैप। जी हाँ, पावर स्लैप इज कमिंग टू दोहा। और काफी बढ़िया हार्ड हिटिंग एक्शन के लिए जो है तैयार हो जाइए। 19th नवंबर 2026 को अली बिन हमद अल अतिया अरीना में जो है ये इवेंट होने वाला है। इसके टाइमिंग के बारे में जो है डिटेल्स अभी आए नहीं है, वो अनाउंस किए जाएंगे। फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: पे जस्ट 10% एडवांस एट जॉया लुकास टू बुक योर फेवरेट ज्वेलरी नाउ।
3: नाउ वी स्टिल हैव टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन।
2: दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू शुड सिक्योर द बेस्ट गोल्ड राइट नाउ। बुक इन एडवांस एट जॉया लुकास एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
4: I am Adar Sharma and you are listening to Radio Olive 106.3.
5: Is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई काफी वियर्ड एक खबर जो है मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो मैंने सुना कि बहुत पहले यानी कि सालों सालों बरसों पहले जो है फिनलैंड में रेफ्रिजरेशन ये सब फिगर आउट करने से पहले कि कैसे रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे ये सब फिगर आउट करने से पहले लोग पता है दूध को कैसे सेफ रखते थे उसमें मेंढक डाल के। सुनने में काफी वियर्ड लगेगा काफी ग्रोस लगेगा मगर ध्यान से सुनिए। साइंटिस्ट लोग और रिसर्चर्स लोग जो है वो ये बोलते हैं कि फ्रॉग्स के बॉडी में जो है कुछ नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को जो है भगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है इस अनयूजुअल ट्रेडिशन के लिए। इवन तो आजकल कोई अपने दूध में मेंढक को डाल के नहीं रखता मगर हाँ सोच के देखिए कि कैसे पीते थे यार। मतलब मैं तो नहीं समझ सकता, मेरे तो कॉम्प्रिहेंशन के ही बाहर है ये भाई। नहीं मेरा हो गया। देख बहुत खबरें देख ली मैंने आज के लिए बस। अभी फिलहाल आप गाने सुनिए और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया जानी तो क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए हमें, हमारे पोस्ट के साथ कंटेंट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए। और याद रखिएगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट करने पर आप चांसेस रखते हैं बहुत ही बढ़िया गिफ्ट जीतने के। तो यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: एक टाइम में कहा जाता था, द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर, गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
3: फुटवेयर, गार्मेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
2: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
4: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
5: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
6: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
6: ऑलिव रिचार्ज।
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी तो बाकी है और जबरदस्त इवनिंग्स भी आने वाला है। तो यही बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं और याद दिलाते हैं कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

ओए होए एक नंबर गाने की शुरुआत हो चुकी है शोध नाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है 5:06

0: चार घंटे अपनी तुम हो तभी तो कुछ बात है।
1: थोड़ा सीधा साधा हूँ मैं, थोड़ा सा हूँ बैड गर्ल, बेबी आई एम अ बैड बॉय, कैन यू बी माय बैड गर्ल।
0: मैं तो ऑलरेडी बैड हूँ यार बहुत सारी लोगों की नजरों में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के लिए जो कि आपने मेरे आने से पहले मुझे भेज दिए, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजे हैं, जिन्होंने मुझे अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है, सो मेरा नंबर है 3311063, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने जो है वो गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपना मुझे प्यार भेज सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में जो चल रहा है वो भी भेज सकते हैं, इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ नहीं सब कुछ भेज सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यार। चलो फिर चको मुसाफिर कैफे से आप ये गाना सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। सो इससे जुड़ी एक बात जो है मैं आपको बताऊंगी वापस लौट के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler. Hey!
2: Say a hello do with Radio Olive and A2Z Event and Trading Catering.
3: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
2: Aur ultimate music ke liye, saath hogi Bollywood ki sensational star, Ishita Vishwakarma Lal.
3: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street Food and full-on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall.
2: 6 p.m. onwards.
3: Book your ticket on Snoonu City or for more info, call 3328-3393.
4: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
5: अरमान मलिक.
6: I'm number one.
4: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
10: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती

0: ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मेल ग्रुप नाउ।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

इज दिल्ली. कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं? सबकी बैंड ये दिल्ली बजाता है, दिमाग खेल जाता है. वाह क्या राइम किया मैंने. आप में से किस किस ने मुसाफिर कैफे देखा? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी ने देखा. नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही प्यारी सीरीज जो है ये है. सो या अब विक्रांत मासी की बात करें. विक्रांत मासी जो है वो इसमें आपको पता है कि मुसाफिर कैफे का उनका सीन जो रहता है, लेकिन रियल लाइफ में भी विक्रांत मासी और उनकी वाइफ जो है मिलकर शीतल ठाकुर रियल लाइफ में दो मुसाफिर कैफे जो है वो खोलने वाले हैं. एक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में होने वाला, एक उत्तराखंड में होने वाला. मतलब जो वाइब आप लोगों ने मुसाफिर कैफे टीवी में फील की थी वो आप रियल लाइफ में फील करने वाले हो. यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी यार ये मुझे, है ना. क्योंकि हम सब लोग जो थे मुसाफिर कैफे देखने के बाद ये देख रहे थे कि भाई यू नो क्या मतलब ऐसा भी कोई कैफे होता है क्या. फिर बहुत सारी रील्स वायरल हुई थी यहाँ पे शूट किया गया मुसाफिर कैफे दिस एंड दैट. सो या अभी फाइनली रियल लाइफ में हम मुसाफिर कैफे देखेंगे यार.

0: फिर कैफे सीरीज नहीं फिल्म थी आई गेस।
1: काश के हम होश में अब आने न पाए।
0: मैं आजकल इतना कंटेंट जो है कंज्यूम कर रही हूँ, सीरीज मूवीज, याद ही नहीं रहता कि क्या सीरीज है और क्या मूवी है। एंजॉय करिए गाना, एकदम गर्मी में ठंडी हवा का झोंका है ये गाना।

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

आ गई अपने अपने दोस्तों की याद. कोई चीज परमानेंट नहीं है यार लाइफ में, यादें रह जाती हैं, लेसन मिल जाते हैं. किसी को दो पैसे दे दो लेकिन अकल मत दो, क्योंकि वही अकल वो तुम पे लगाने वाला है. मैंने तो दोनों दे दिया. 5:50 40 सेकंड स्टूडियो.

0: राइट सो मौसम जो हमारे साथ फरेबी नहीं कर रहा है एटलीस्ट शाम को. मौसम किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रहे हैं. ये गाना आ गया आपके लिए, इंजॉय करो. अगला घंटा जो है आपके लिए कुछ फ्री में मिलने वाला है आपको. ए हालो धूम की टिकट्स.
1: You are not ready for this.
2: Na de dil par de teenu.

मुझे याद है लास्ट ईयर जब बोर्ड शो हुआ था, है ना, हम कहीं पे यानी कि टॉप फ्लोर पे कहीं पे बैठे थे, एकदम हाईएस्ट पे, और वहां पर जो लास्ट डे था, जो फायरवर्क्स होते हैं भाई, वो फायरवर्क्स हमको आंखों के सामने दिख रहे थे। मेघा जी सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। सो कदर बोर्ड शो जो है वो एक बार फिर से आने वाला है, और इसकी टिकट जो है वो सेल पे स्टार्ट हो चुकी है, सेल पे जा चुकी है। तो आप जो है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है इसका 50 कतरी रियाल है, जो कि काफी कम है यार। सो आप लोग टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, और ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है अभी तो नवंबर से, नवंबर बस आ गया यार, अगला महीना है ना, 4 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक ये ओल्ड दोहा पोर्ट में होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, 3rd एडिशन है ये। सो या मतलब इसके फायरवर्क्स और जो हॉल वहाँ पे बनता है ओल्ड दोहा पोर्ट, तो वैसे भी बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है, क्योंकि वहाँ पर वेंट आउट सेशंस करने का जो मज़ा आता है, ओ हो, वहाँ पर जो चुप रह के निहारने का मज़ा आता है, वहाँ पर जो दोस्तों के साथ बैठने का मज़ा आता है, ओए होए, वो अलग ही लेवल है यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास, और मौसम को सोच रही थी इस गाने को सुनते सुनते यार। हाँ छड्डो द वन, ये फिल्म देखी है यार मैंने, अच्छी है, देख सकते हो आप भी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
4: हाय एवरीवन मैं हूं अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

तो कोई बात नहीं, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो लाइफ में। मैं जी सुनियो कि दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। सेल्फ लव जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 6:20, 42 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और ये टाइम में आपको रिमाइंड करवाने का कि टिकट्स बुक करवा लीजिए। रेडियो ऑल ओवर A2Z इवेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव म्यूजिकल नाइट, ए हालो धूम जी, जहां पर बहुत सारा देसी म्यूजिक होने वाला है, देसी बीट्स होने वाली है और ये सब कुछ जो है वो होने तो वाला है रिजेंसी हॉल में, लेकिन इनमें एक सिंगिंग स्टार इशिता विश्वकर्मा भी होने वाली हैं जो कि लाइव परफॉर्म करने वाली है। हम सब भी वहीं पे होने वाले हैं, तो मिलके घाघरा वगैरह पहनेंगे, समय वही करने वाले हैं हम, ठीक है। दो मुझे आता नहीं है बट आप लोग सिखा देना। बट उससे पहले आपको क्या करना है, स्नूनू सिटी पे जाके टिकट्स जो है वो बुक कर लेनी है। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ मोर डिटेल्स के लिए, ठीक है, 3328 3393 जी हाँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9th अक्टूबर, इस 9th अक्टूबर को, ठीक है। तो टिकट्स तो बुक करेंगे, मेरे पास एक और कपल टिकट है, कपल पास है एक्चुअली इसका, तो आप वो जीत सकते हैं। आपको मुझे 15 से 30 सेकंड के बीच में बताना है एकदम फुल ऑफ एनर्जी के साथ कि हे सिमरन अपना नाम बताइए और रीजन बताइए। ये मत बोलना कि मैं मेरी वाइफ को आज तक कहीं पे लेके ही नहीं गया हूं तो मुझे लेके ही जाना है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब कुछ नया क्रिएटिव तरीका बताइए कि आप ये पासिस जो है वो क्यों डिजर्व करते हैं। 3311106 पे फटाफट से वॉइस नोट भेज दीजिए।

0: जो फ्री टिकट जीतेगा उसी का दिल डिंग डांग डिंग बोलेगा। चलो फिर अगला गाना सुनो।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns. Crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जाने अब क्या होने को है, कितना क्या सोचना यार, सोचने से रुक थोड़ी ना जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा। कभी कभी तो मैं ऐसे बातें करती हूँ, मजा सा आ जाता मुझे करके कि सिमरन कौर ये तू बोल रही है। आई नो राइट। आप अपने टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, जहां पर आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स होंगे, लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, डांस होगा, मस्ती होगी। बस आप अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आ जाइएगा, जो कि आपने रखे हुए थे कब से कि यार कैसे कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो देसी बीट्स होने वाले हैं, तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स लेके आ रहे हैं। बट उसके अलावा जो हमारे रेडियो ऑलिव के लिसनर्स हैं, हमने उनके लिए भी सोचा है कि कुछ हमारे लकी लिसनर्स जो हैं फ्री कपल पासेस जो हैं वो जीते। तो मेरे पास एक कपल पास है आज, और आप अगर ये जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने मुझे 15 से 30 सेकंड में जो है एक रीज़न बताना है कि आप ये कपल पास क्यों डिजर्व करते हैं। सो क्विकली आप मुझे अपना वॉइस नोट भेजिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए और 30 सेकंड। बड़ी लंबी कहानी नहीं छेड़नी है, इतना ज्यादा नहीं सुनती मैं, ठीक है? ओके, सो 3311063 पे आप भेज दीजिए। एंड उसके अलावा अगर आपकी किस्मत यहाँ पे नहीं बनी, तो आप हमारे रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पे जाकर एक रील और हमने पोस्टर भी अपलोड किया है, वहां पे लाइक कॉमेंट एंड शेयर करके भी आप फ्री कपल पास जीत सकते हो।

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे एक टाइम में कहा जाता था द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
0: से ए हालो धू विद रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट एंड ट्रेडिंग केटरिंग।
2: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
0: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma live.
2: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street food and full on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
0: 6 p.m. onwards.
2: Book your ticket on Snoonu City or for more info
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
0: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: इतना क्यों डर रहा है बेबी? मेरा धक धक होता है जब मेरा वेइंग स्केल थोड़ा सा ऊपर दिखाता है यार। आपका धक धक कब होता है यार? आप लोगों के लिए लेकर आया है इस 9th अक्टूबर को रीजेंसी हॉल में एकदम घाघरे वागरे पहन के एकदम गरबा स्टाइल में मजे आ जाएंगे यार आपको करने में। डांस और क्या कहते हैं बहुत सारा म्यूजिक जो है वो होने वाला है और उसके साथ साथ यू नो इशिता विश्वकर्मा जो कि बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार है वो भी होने वाली है स्टेज पर आपके लिए गाएंगे और आप नाचिए मस्त म्यूजिक जो है वो आपके लिए चलता रहेगा। बट फ्री टिकट्स तो हम रेडियो ऑलिव पर जो है वो दे रहे हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी हम दे रहे हैं। बट उसके अलावा आप टिकट्स जो है अपने दोस्तों के साथ फटाफट से बुक कर लीजिए क्योंकि फटाफट से टिकट्स जो है वो सब लोग बुक कर रहे हैं स्नूनू सिटी पे जाके। आपका स्नूनू का एप्लीकेशन है ना उसमें स्नूनू सिटी का ऑप्शन होगा तो वहां पे जाके ए हालो धूम करके आपको दिखेगा। फटाफट से टिकट जो अपनी बुक कर लीजिए। नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको डिटेल्स चाहिए इसके रिगार्डिंग और तो 3328-3393 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। सो इस 9th ऑफ अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में मिलते हैं आपसे मस्ती करने के लिए। बाय द वे मेरे कपड़े अभी तक रेडी नहीं हुए हैं बट ठीक है कर लेंगे यार। और आप लोग बताओ क्या सीन है आपके कपड़े रेडी हैं?
1: हेलो सिमरन गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग
1: रेनू ही यार।
0: हाय रेनू।
1: ट्रेडिशनल कपड़े रखे हुए हैं सूटकेस में।
0: अच्छा
1: और बहुत सारे रखे हुए हैं तो इस बहाने वो कपड़े पहनने को मिल जाएंगे और इंजॉय कर लेंगे। सो मैं और मेरे हस्बैंड डिजर्व करते हैं प्लीज गिव पास थैंक यू जियो बिंदास
0: बधाइयां में जाएंगे बहुत सारे पटाखे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कल का शो भी ध्यान से सुनिएगा सुबह का और शाम का टिकट्स आपको मिल ही जाएंगे नहीं तो हमारे सोशल मीडिया पे जाके टिकट्स जीत लीजिए और नहीं तो बुक तो कर ही लो यार।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

एक्शन रिप्ले फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें ऐश्वर्या राय की जो लुक थी ना, जोर का झटका, उसमें बियॉन्से से इंस्पायर्ड थी। अगर बात करें इस फिल्म की, सो ये फिल्म जो थी वो हैवीली इंस्पायर्ड थी, जो कि 1985 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर, और इसको इतना ज़्यादा हैवीली इंडियनाइज जो है वो कर दिया गया, उसकी वजह से ये फिल्म डिजास्टर बॉक्स ऑफिस पे रही। सो जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अक्षय कुमार का जो लुक था ना इसमें, सो अक्षय कुमार को फीलिंग थी कि भाई एक तो ये लुक अच्छा नहीं है और ये फिल्म बिल्कुल अच्छा ही काम नहीं करने वाली है बॉक्स ऑफिस में। लेकिन फिर भी इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे विपुल, तो उनके कहने पर उन्होंने कंटिन्यू रखा शूटिंग का, और हम सबको पता है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में क्या हाल हुआ था। रिप्ले के बारे में और भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार, म्यूजिक चालू होना चाहिए बेबी।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सिमरन कौर है तुहाडे नाल। आज हम एक्शन रिप्ले फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम पहले फ्लैश फॉरवर्ड रखा गया था। अक्षय कुमार की लुक काफी ज्यादा इसके बारे में जिसकी बात हो रही थी। सो ये यू नो जो उनकी लुक थी वो 70s के अमिताभ बच्चन सर से इंस्पायर्ड थी, और इनका जो हेयर स्टाइल था वो 70s की जो सुनील दत्त सर की लुक थी वो उनसे इंस्पायर्ड थी। और इसमें जो वो गाना है ना, जो कि आजकल हर शादी में बजता और उस टाइम पे हर शादी में बज रहा था, जोर का झटका, ये वाला गाना जो था ना, इरशाद कामिल की उनकी वाइफ के साथ लड़ाई हुई थी तो उन्होंने ना तब लिखा था ये गाना। और इसमें 70s की जो कार थी वो इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में से जो थी बहुत ही ज्यादा पैसों से खरीदी थी, क्योंकि इस फिल्म में जरूरत पड़नी थी। यार क्या बात है, इस फिल्म के लिए इतना कुछ गया लेकिन फिल्म फिर नहीं चली यार। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और भी खूबसूरत लगेगा मतलब।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

जी कहो ना प्यार है इसे आप ये गाना सुन रहे हैं जब आप किसी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो एकदम बढ़िया ट्रीट करते हो तो कभी कभी सामने वाला ये समझने लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो ये भूल जाता है कि कोई अगर आपको अच्छा ट्रीट कर रहा है आपकी गलती होने के बावजूद भी, आपके बुरा होने के बावजूद भी, आपने जो गलत किया उसके बावजूद भी अगर सामने वाला आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो अच्छे वो नहीं, अच्छे ये लोग हैं जो कि आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड जो है वो नहीं लेना चाहिए। समझ जाइए लाइफ में यार, अच्छे लोग हैं तो अच्छों के साथ आप अच्छा रहिए। बिल्कुल मुश्किल ही है ऐसे लोग मिलना यार, जो कि अगर सामने वाला आपको अच्छा ट्रीट कर रहा है तो वो भी आपको अच्छा ट्रीट करें।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 November तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ब्यूटीफुल ट्रैक यार. 7:49 सोनियों की दादी की हालचाल सत श्री अकाल. सिमरन कौर है तुहाडे नाल. अब आप भी मेरे नाल हो तो मैं तुहाडा नाम ले लेनी हूं. आपके नाम है अभी के अभी ले लूं तो आप अभी के अभी अपना नाम मुझे लिख के भेज दीजिए. मेरा व्हाट्सएप का नंबर अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ. वैसे हमारे सारे लिसनर्स को पता है लेकिन जो नए वाले हैं उनको बता देती हूँ. मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063. जी हाँ, 3311063. इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. चलिए अब मैं नाम आपके पढ़ने स्टार्ट कर देती हूँ. मनीष जी थैंक यू सो मच, वर्षा जी थैंक यू सो मच, बद्री जी थैंक यू सो मच, किरण जी थैंक यू सो मच, शिल्पा जी थैंक यू सो मच, फराना जी थैंक यू सो मच, वेंकी जी थैंक यू सो मच, चावला जी थैंक यू सो मच, राहुल जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, सूर्य जी थैंक यू सो मच, इदरीस जी थैंक यू सो मच, फारूक जी थैंक यू सो मच, जुल्फी जी थैंक यू सो मच, सादिक हमदान जी थैंक यू सो मच, इस्माइल जी थैंक यू सो मच, श्रीनिवास जी बहुत बहुत शुक्रिया, रीनू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी थैंक यू सो मच, रॉबर्ट जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, हमजा जी थैंक यू सो मच, हमजा अली मजारी, मोहम्मद वसीफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. इस्माइल ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ. अगला गाना दोस्तों शुरू होने वाला है. अगर आप अभी हाय हेलो ही करते रहोगे तो नाम कब भेजोगे यार. आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया, फातिमा यूसुफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड रियान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, पार्थ जी थैंक यू सो मच, सुनील जी थैंक यू सो मच, सईद जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब्रार जी का शुक्रिया, एंड अग्निवेश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के नाम लिए बढ़ाओ आप थैंक यू लिख सकते हो ना, फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है यार. चलो फिर अगला गाना सुनो, पुराने दिन अरिजीत सिंह की आवाज़.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली।
3: हे, दिस इज इलियाना डिक्रूज।
4: दिस इज मी ऋतिक रोशन।
5: हाय, आई एम आलिया भट्ट।
6: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
0: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

गाना है यार, और क्या फिल्म है लैला मजनू। टिकट बुक कर लीजिए, और टिकट बुक करने के साथ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, इस नंबर पे आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो। 3328 3393, एक बार वापस से बता देती हूँ, 3328 3393, इस नंबर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इसमें इशिता विश्वकर्मा जो है बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार होने वाली हैं, देसी बीट्स होंगी, लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स आप लोगों के लिए ये अमेजिंग शाम लेके आए हैं। सो फ्राइडे है, छुट्टी भी होगी 9th अक्टूबर, रिजेंसी हॉल में आप लोगों से मिलते हैं। बट मेक श्योर कि आप लोग जो है वो टिकट्स टाइमली बुक कर दो, क्योंकि फिर टिकट्स नहीं मिलेंगी।

0: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, गेद रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

गाना चलते चलते बैग तो नहीं पैक कर लिए है? पिछले कुछ दिन से ना मुझे एक चुल मच रही है। शाम का टाइम होता है जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, मेरा ऑफिस इस टाइम के बाद जो है वो खत्म होता है, सो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं रेगुलर जो है, थोड़े दिन से मेरा ये सीन चल रहा है कि मैं यहाँ से निकलते ही चाय जो है वो पीती हूँ। सो अलग ही लेवल की चुल जो है वो मची हुई, और धीरे धीरे जब मौसम और ठंडा हो जाएगा फिर मेरा क्या हाल होने वाला है मुझे नहीं पता। लेकिन ठंडे मौसम से याद आया, बरूक सीजन जो है वो वापस से रस बरूक में जो है वो हो जाएगा। दिसंबर 23 से स्टार्ट होगा और 4th February तक ये चलने वाला है। सो मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था इसका, रासा ब्रूक नियर जिक्री जो है। सो वहाँ पर लेट नाइट शाम को बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें बहुत ही कम प्राइस पे आपको जो है वो एंट्री मिल जाती है। 30 कतरी रियाल, 50 कतरी रियाल की ऐसी टिकट जो है वो मिल जाती है। सो मेक श्योर जाने से पहले आप जो है वो टिकट बुक कर लीजिएगा ऑनलाइन। लेकिन वहाँ पर भी होता है कि आप वहाँ पर भी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। बहुत सारा एडवेंचर थ्रिल और बहुत सारे इवेंट्स और एंटरटेनमेंट डाइनिंग एंड ऑल बहुत कुछ होता है। सो एक बार आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत ही मजे का होता है ये।

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: बिंदास। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

डार्लिंग, तो चलूं 8:49 स्टूडियो की घड़ी पर चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने बताऊंगी। और उसके साथ साथ

0: थी।
1: ओहो, चलो अब मैं आपको कल मिलती हूँ शाम को 5 बजे, फिर से होती है जबरदस्त इवनिंग्स में मुलाकात। ओवरथिंकिंग मत करिएगा, खाते पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे बड़े भाई स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ.
2: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas
1: चांदनी रातें चांदनी रातें।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।